अचल अविनाशी सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस मृत दुर्मत मलनासी सतगुर चरण कमल रित धारण गुर अर्जुन गुण सहज विचारन गुरु रामदास कर क्यों पर

लोक मथे लग्न वास्ते तेरे चरना दे पहुंच सदके अग्नि गोविंद सिंह तेरा ही करना शुक्र है जे गुरु के प्यारे गुरु के सुख दीदार मथे करने वास्ते जान ते फिर इस मन ना जान इस ख्याल ना जान के धन सो दे इस जहां तू वसिया मेरे सजन मीत पूरा रहे मेरे सजन ते मीत मित्र घनेरे करत की मेरा कृपा देखो धन सो मीत धन सो देश

0: इंसान इस गल की खोज ना कर पैदा कितों होया सा कितों पैदाइश दे रही है एक नापाक पानी दे कतरे तो ते वजूद ऐदां दा खूबसूरत बनाई बैठा है ते वजूद करके तू अपने शीशे मोहरे जो खलो जांदा ते तेरा चेते नहीं करदा हटण नूं कदी वेख्या कर जिसने तेनू खूबसूरती दिती है पे ओ किड्डा खूबसूरत होवे ते कित्थों तू पैदा होया बंदे खोज दिल हर रोज
1: करीमल कमाल है
0: करीमल कमाल है गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे ने ओ कैसा है करीमल कमाल है कि हुस्नल जमाल है ओ खूबसूरती का मुजस्मा ही है बस दी पर ए सोचा कर कितों उपजे दूजी गल कह रहे तीसरी गल जिंदगी है ए नाटक जेड़ा ना इट इज जस्ट गोइंग टू बी फिनिश्ड ये तो खत्म होने वाला ही है और तू हाले अपना आप सवारी जांदा इसे काम ते सारा दिन वेस्ट ना कर दिया ना ना ना ना ये सवाल अपने मन ते करके कितों उपजे कह रहे के मान समावे बंदे खोज दिल हर जो तू ये खोजेगा ढूंढेगा तलाश करेगा ना फिर परेशानी मान दुनिया में बहुत ही देर नहीं रहना मेरे आदर योग मास्टर जी ने सवेरे अरदास तो बाद अपना बचन ही इथो आरंभ किया कि संसार नाशवंत है मैनू उस वेले याद आया सुनना जी पंजाबी विच ए जग सराय मुसाफरां दी इत्थे जोर वाले कई आ गए ए जग सराय मुसाफरां दी इत्थे जोर वाले कई आ गए शदाद नमरूद फरून जाए बे दावा बन खुदा कहा गए अकबर शाह जाए विच दिल्ली दे जी फेरी वांग बन जा रहे हैं पा गए शाह मुहम्मदा रहेगा रब सच्चा वाजे कूड़ दे कई बजा शाह मुहम्मदा रब और रब दे वरसा है भगवान भगवंत दे वरसाए हुए अकाल पुरख दियां जोतां संभाली फिरन वाले ए महापुरश क्योंकि दो चीजा रहिंदियां संसार विच गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने

जे उंज असी कही ना पे असी ते जागदे ही रहने जी, बड़ी बड़ी रात जागदे रहने। मैं गल इथों आरंभ करन लगा, जिन्ना क मैं जीवन आदर योग राजा साहब दा पढ़िया है, पहलियां करामतां करामातां रहमतां आसीसां दुआवां दे भंडार असी परसों तक वेखते रहे हैं, सुनते रहे हैं। लेकिन एक अगला बाब शुरू हुंदा है, अगला चैप्टर शुरू हुंदा है कि माहबियत अंदर सूफियाना तबीयत विच कैसे सन। बहुत सन, खूब सन जी, बहुत ही खूब सन। दरअसल माहबियत नाल ही उस परमात्मा नाल जुड़ना है। ते ए साडे साहत अंदर, पंजाबी साहत की मैं गल करन लगा, और साडे कल्चर अंदर ए गल है कि बड़े बड़े इत्थे सूफी फकीर होए ने, बड़े बड़े सूफी फकीर होए ने, और उन्हां चो तां एक दो चार ते गुरु अर्जन देव जी पास आए, फिर साडी भी कलाम चढ़ा दिओ, साडी भी बाणी चढ़ा दिओ। सतगुरु कहण लगे सुनाओ जी। सुनाई ते गुरु अर्जन देव दे पाए तो नीवी सी, आखन लगे नहीं वे साडी तां कसवटी ए है, वो तो यह नीवी गल है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज नहीं हो सकती। वैसे तुसी सूफी कलाम लाए, बहुत मेहरबानी। बाबा फरीद दा मैं एक जिक्र कर लेवा, वो कहंदे ने मैं रब हुणे ही मिला दिना, मैं रब हुणे ही मिला दिना, अजे मिला दिना। ता किंतु परंतु करन वाले बंदिया ने आख्या, बाबा तू तां वरिया तोड़ी घरों बहर फिरदा रहा, नंगे पैरी नंगे तन काठ दी रोकी ते समझ के पे असली है कोल रही फिरदा रहा, लावण मेरी भुख समझ के फिरदा रहा, तू इन्हे ततीशा कीतिया पुठा लटकिया रहा, कामा ने तेन खा लिया ठूंग लिया, हुण तू कहना है पे मैं अज मिला दिना। कहिंदा हुणे समझ आई है, हुणे मैं दस्सदा सूफी बात दी है, जदों समझ आ गई उदों दस दित्ती है। ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दा किन्ना धन्नवाद करिए, हदों वध करिए, जिन्हां ने साडे वास्ते कलाम गुरु ग्रंथ साहिब जी विच बाहफाजत रख लई है। बाबा फरीद कहंदा

मेरा तन गुरु नानक पातशाह है। कलयुगी जीवन के उद्धार करने वास्ते जा रहे सोलह कला संपूर्ण चलिया अनंत कला हो ठाकुर सदा

सनातन शक्ति निरंकार की शक्ति त्रेते युग के अवतार भगवान रामचंद्र जी 14 खंड द्वापुर युग के अवतार भगवान कृष्ण जी 16 कला लेके आए पर निरंकार की सारी शक्ति का मालिक कौन प्यार नाल सारे आखो बाणी लिखा अनंत कल तेरी गिनती मिलती को जिस तरह वाहिगुरु बेअंत है उसकी शक्ति भी बेअंत है उस शक्ति को लेके अर्शों को हर्षों के मात लोग दे जीवों की कल्याण करने वास्ते आप निरंकार मेरा धन गुरु नानक पातशाह बन गया साहबा ने तकिया संसार रोगी है मात लोक दे रहने वाले इंसान सारे रोगी किसी को कोई दुख है किसी को कोई दुख तो जगत की हालत को तक के हजूर अज जा रहे हम सभी जा रहे हैं सच्चा वैद रोगी मनों को आरोग करना दुखी जनता को सुख देना हमें रोग मानुक को दिन काम रोग मैंगल बस्ती न दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गए फुरंगा अगर केंद्र जो जो दिश है सो सो रोगी हर कोई रोग जो जो दिश है सो सो रोगी बाली रोवे नाए भतार नानक दुखिया किसी को कोई दुख लगा है किसी को कोई जिसे कोई माया नहीं है वो भी दुखी ते कईयां को बहुत ही आ गई है वो भी दुखी जिसे कोई माया नहीं वो भी रात दिन हाय माया की कल्पना से जे किसी को बहुत ही आ गई है वह भी हजूर बाणी फरमाते जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता जेदे को नहीं वो माया चाहता जे किसी को बहुत ही आ गई है उन्होंने नींद नहीं आती कि किधरे माया के लालच चोर आके मेरा सिर ही ना वढ़ दे उन्होंने राती नींद जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे और बनता जिदे को नहीं वो भी दुखी जिदे को है वो भी दुखी जिदे घर पुत्र नहीं है वो भी दुखी रात दिन अरदासा करता है वाहेगुरु मेरे पुत्र की बात पर कई पुत्रों तो भी तंग है जेदे घर पुत्र नहीं वो भी दुखी ते जे पुत्र नलायक हो गया है माता पिता तंग दुखी जेदे घर है वो भी दुखी जेदे घर नहीं कोई चौधर से मान वड्याई वास्ते परम दा सारी जो जो दिश है सो सो रोगी किसी को तन का रोग लगा है किसी को मन का रोग लगा पर आरोग कौन इस दुनिया में आरोग कौन है तो हजूर
परमानंद मालिक, जो जो विषय सो सो रोगी रोग रहित मेरा सतगुरु अरोग सतगुरु अरोग कौड़े प्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक अज अरोग दाता दुनिया नो अरोग करने वास्ते जा रहे पिछे मरदाना मोडे ते रवाब भरे सोचा ते दलील तुरिया जाए मरदाना सोचता है पता नहीं मालिक किधर जाए काफी समय हो गए तुरे ही जाने उन्होंने लोग बुरा भी कह मंदा भी कह पर वो अपने सच्चे रस्ते पे चल देंगे पर दादे उदास ना हो मरदाने काबर ना तू कहो मेरा निरंकार एदा भी पलट मरदाने ने कहा महाराज इस पापी का पलट जे मेरा बोले या रब सुनदा होवे मैं तो कहांगा संकारी नु रब उथे बारे जिथे पानी ना नसीब हो ना मरदाने तू कीर्तन कर रहा तेरी रचना ते गुरबाणी का वास है जिथे गुरबाणी का वास है उथे निरंकार का वास है प्रधानी कहो मेरा निरंकार एदा भी भला बाबा एदा भला हजूर कह लगे हाँ प्रधानी तू कहो मेरा वाहिगुरु एदा भी भला बुरे नाल सब बुरी करें दे माफ करन के सियाने बुरे नाल फिर नेकी करनी ए गुरु नानक ने प्रधानी साडा तीजा वचन है मोड़ न तू ही कहो मेरा निरंकार एदा भला करे ते मेरे सिख भी वाहिगुरु जी अरदास करया करनगे ते की कहणगे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत ते सरबत दा भला पगड़ वाला दुनिया च कोई आया है तो मेरा धन गुरु नानक साहब सारिया साहबा ने बाणी किया सबे जी संभाल सबे जी संभाल अपनी मेहर कर गुरु ने सारिया का पलन गुरु नानक क्यों वड्डा है धन गुरु नानक पातशाह क्यों सारिया तो वड्डा है ਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਆਓ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ

कमर कटारा भौकड़ा बंके का हसवारा। गर्व न कीजे नान का मत सिर आवी करोड़िया, तो केड़ी चीज का माण कर जवानी रे, ए जवानी सदा नहीं रही, आउंदी है चली जा। ए झूठा हुकूमत का माण कर दे। इस संसार च बड़े बड़े राजे महाराजे आए जिन्हों का नामो निशान नहीं है, माया का माण करदा है भी झूठा हुआ। माया ये तो चलता पानी, ए माणवी की धर्मकार ने तेन मनुष्य जन्म दिता, चंगे कम करने हौमे हंकार फिर रहे हैं, याद रख एक दिन पछताए। साहबा का पवित्र पावन उपदेश इस वेले करोड़िए ने सुने, पत्थर वर्गा मन पानी है, काठी सिर को रख दिती, दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह के चरणा ते दस्या, रोज लग पातशाह मेरू बख्श लो मैं पापी, मेरे कोलो कुल हो गए, अपने चेहरे के दाग जेड़े ने तो दिस दिन जे शीशे कोल जाइए, शीशे कोल ना जाइए तो पता ही नहीं लगता। इसे तरह अपने कीते कर्म जेड़े हैं उन्हां दा पता तां लगता है जे किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए। महापुरुषों का जीवन साफ शीशा होता है। अज धन गुरु नानक पातशाह जी धर्मकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रो रहे, उबा मार के रोई जाता, कहता है पातशाह मेरे बख्श, अरदास कर रहे आओ आप भी करिए। किस तरह करोड़िया नाले रोंदा है ते नाले पर पहला सेवक बोलेगा पिछे सारी संगत।

करो लिया अरोरो के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरणानुष्ठ हो पातशाह बस अदूर कहन लगे मरदानिया बख्शीए मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनू पुछ के बख्श दो ये तो तुहाडा बिरद है जो शरण आवे तो तंठ लावे ए बिरद सोहनी संगा तो हजूर ने अभ्य दृष्टि तकिया तो किया करोड़िए फिर जप सतनाम संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन पवित्र नाले बाणी पड़े नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेन नरंकार ने माया दिती है दान पुण्य जो माया भी कर सत हूं करोड़िया से गल च पला पा के कहता पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चल मैं थोड़ी सेवा थोड़ू प्रसाद छकाव दुध पिलाव अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलिए मरदाने ने कहा महाराज ये भी कोई पूछने वाली गल है चलो हूं तो सिख बन गया कौड़िया अदूर कह लगे मरदाने अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह हजूर कह लगे मरदाने अजे सिखी दिती सिखी की है हुकुम ते जे हुकुम मनेगा तो फिर ही साडा सिख सिखी गल्ला भी सिखी गल्ला की सिखी कमजोर सिखी

जो गुरु का उपदेश साहबा ने करोड़िए से बख्श और असी भी इस उपदेश को हृदय च बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले हर पल आते मेले और कैरी सात संगत जिथे होस्टल दिया संत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधा के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल जुड़े तो अज गुरु दरोवर साए हुए अमरीकन सिंह गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर भाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई ओदे कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाण गए उस तो कीर्तन की समाप्ति अमृत वेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रोटीन चल रही है उसी तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी भी महान महान बख्शिश द्वारा बरखुरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने उचों कीर्तन की भेद शब्द आदर कर दे डालर अरदास कराते मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने गुरसिखा बच्चिया सिखी जीवन सदाचार दिया कला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।

ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे कने सब विचार सच्चा तेरा मन सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सत्य गुण लखनऊ सच्चे सतान सच्चे ससुर सच्चे तेरे सिर सच्चे साला सच्चे त्रिपुत्र सच्चे पातशाह नानक सच सच जो मर जमे सो गज गज महला पहला

0: चने तक फिरी आओ पैव जगन कटे बेकार पैव धरती जब बेकार पैव चंद्र सिर पार पैव राजा तक द्वार पैव सूर्य पैव चंद तो करोड़ी चंदना पैव सिंधु सुनार पैव चाटाने आकाश पैव जोत मामल सूर पैव जावे जावे मोर सजे पौन के सिद्धे नानक ने पौ निरंकार सचे अल्लाह पहला
1: नानक ने पौ निरंकार होके तेरा अनुवाद कितने कन कहानियां कितने भेद विचार।

पंज सुर का राग है, सा गा मा धा नी, पंज सुर है। इस विच रे और पा ए नहीं लगना। चंद्र कौशल

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब मेरा वरे राग जोग

एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौश, चंद्र कौश, सूर्य कौश, जोग कौश, चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात्पराई। जब ते सात संग में पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई। जो कब की नो सो भल मान्यो, इस मत साधु ते पाई, सब में रव रहे प्रभु कह, देख देख नानक भिखसाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने, ये तराना जेड़ा है ये अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा नू चुका के रख देने वाली बात है। मैं इत्थे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहन लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा साडे सामने ना कहा, कहिंदे असां ही वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए आ, कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ। ये तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी ये सानू लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी नहीं। मैं कहा जी ये फिर साहिब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो, उन्होंने को ही यह दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहिब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में नमस्कार की। इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मान तो तराना श्रवण करना। साहब सब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ के अंदर विद्यमान ने, कभी आप दर्शन करना।

तो मेरा भाव कहता है कि जेडे प्रचलित शब्द ने आप पढ़ लेने जेडे औखे शब्द ने भी राजी सिंह पढ़ने चाहिए ने। हां जी, तो राजी सिंह इधर भी ध्यान देना चाहिए, संतान श्रवण करना चाहिए, राजी सिंह गायन करना चाहिए। आनंद साहब जेड़ा है वह मर्यादा किवें पढ़न दी, जोटियां की धारना पढ़ लेने ना, यह मर्यादा नहीं। मर्यादा है राग रामकली दे विच और तीन घर दे विच पढ़ना, घर तीजा रामकली, तो उसका स्वरूप श्रवण करो जिवें साहिब आप आनंद साहब पढ़ते हुंदे सी रामकली राग।

पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत इस रात तो दाई दया खेले गर्मी अप अपनी सारे जपो जिन्नी नाम गए मसक नानक

इतनी सेवा प्रवान कर वो धनता दे जो कोई जोगी आप साहेब गुरु ग्रंथ साहब जी जूगी कचर बैठ के हरी जस हरी कीर्तन बड़ी श्रद्धा से भावना ना सबल करो सुरदास भी अपने उच्चे भाग संबंध है आप वर्गी साध संगत के दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होया है जेडे कि गुरु ग्रंथ साहब के रागा के शौकी है नहीं तो ज्यादातर गुरुद्वारा त्रिमी कीर्तन चलता है जिन्होंने कहते अस वे वे रागी हैं संत बनते हैं सब त्रिमी टूना गा रहे हैं महाराज बख्श कर सारे साल गुरु के बख्श बराब रखे कीर्तन सुनने की श्रद्धा बख्शन आओ अंत सरबत माई भाई जितने गुरु चरणा बैठे हो छोलियां अड़के यही अरदास बेनती जोदड़ी करनी है अकाल पुरख अगे हे सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर जी आप जी कृपा करो सारी छोलियां अपने पवित्र नाम की खैर पाओ जपो सारे कोई उस ना खाली

हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां। आरता मैंने मंगता, जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।